हाँ तो चल रही है दुनिया में डिफरेंट तरह की जंगें, बट दैट डज नॉट इम्पैक्ट रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स. उनका अलग ही पैरेलल यूनिवर्स है. 2026 का मोस्ट इंटरेस्टिंग डेटिंग ट्रेंड इज डॉग फिशिंग. इसका मतलब ये नहीं है कि कुत्ता मछली पकड़ने जाता है, इसका मतलब ये है, विच वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स फाउंड आउट द हार्ड वे, जब एक आदमी या औरत अपने पड़ोस के टॉमी कुत्ते को गले से लगाकर फोटो खींचकर डेटिंग ऐप पर डाल देती हैं, एंड आफ्टर यू राइट स्वाइप देम फॉर थिंकिंग कि माई गॉड इसे जानवरों से कितना प्यार है, यू रियलाइज कि इसके पास जानवर है ही नहीं. द ओनली जानवर ही इज इंटरेस्टेड इन आर हिज एक्सेस. That's exactly what happened to my bestie and she was heartbroken legit. तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो who is guilty of dog fishing, please don't text me or maybe you should. Because maybe I can convince you there are better ways of looking very hot on a dating app without lying. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. Find me on the gram या Facebook and while you do that, कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: मेरा बॉयफ्रेंड और मैं, हम पिछले 3 साल से डेट कर रहे हैं एंड इट्स नॉट बीन स्मूथ, देर हैव बीन बम्प्स ऑन द वे, लेकिन मुझे लग रहा था वी वर डूइंग रियली गुड और इस वीकेंड पर वी वर स्पेंडिंग द वीकेंड टुगेदर एंड ही केम अप विद दिस वन वेरी सीरियस कॉन्वर्सेशन इन विच ही सेड कि वो अपनी सेक्शुअलिटी को क्वेश्चन कर रहा है, जानता नहीं है इफ़ ही इज़ इन टू वीमेन और मैन और बोथ एंड ही सेज दैट ही इज़ वेरी अट्रैक्टेड टू मी, वो चाहता है कि मैं उसकी ज़िंदगी में रहूँ हमेशा, लेकिन राइट नाउ ही इज़ आस्किंग फॉर अ ब्रेकअप बिकॉज ही सेज कि उसे वक्त चाहिए टू फिगर आउट हिज सेक्शुअलिटी. मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मतलब अगर वो ब्रेकअप मांग रहा है तो ऑब्वियसली आई विल ब्रेकअप, बट क्या इज़ देयर होप इन दिस वेरी क्रेजी सिचुएशन कि हम वापस फिर कभी भी एक कपल हो पाएंगे?
1: रोशी के DM से.
0: This person has asked that मैं इनका नाम नहीं रिवील करूँ and I completely honor and respect that. Sweetheart, I think that sure he has broken up with you at this point in time and वो जब आपसे कह रहा है that he is questioning his sexuality, ये बहुत बड़ी बात है for a man to come out clean like this and say कि यार मैं ऐसा सोच रहा हूँ और मैं नहीं चाहता, कि while I am trying to figure out कि मैं क्या प्रेफर करता हूँ, कहाँ स्पेक्ट्रम में मैं कहाँ लाई करता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू ड्रैग यू विद मी. सो ही इज़ एक्चुअली बींग वेरी ऑनेस्ट एंड फुल ऑफ लव टू यू अबाउट दिस सिचुएशन. एट दिस पॉइंट इन टाइम आप उसके दोस्त शायद ना बन पाओ, उसे सपोर्ट ना कर पाओ एंड दैट्स ओके बिकॉज आपके खुद के भी बहुत फीलिंग्स होंगे टू अनपैक. तीसरी चीज़, आई फील लाइक एट दिस पॉइंट इन योर लाइफ अगर आप उसके साथ अटैच्ड रहे या कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन रखा या होप अलाइव रखी, यू विल एंड अप क्रिएटिंग अ वेरी टॉक्सिक सिचुएशन फॉर योर सेल्फ. सो माई सजेशन इज़ राइट नाउ आप उन्हें फ्रीडम दें टू एक्सप्लोर हिज सेक्शुअलिटी, अलाउ हिम टू डू वट एवर ही वॉन्ट्स विद हिज लाइफ. ऑन योर पार्ट आई थिंक यू शुड सेपरेट एंड हील, फोकस ऑन सेल्फ हीलिंग. 3 years ऑफ अ रिलेशनशिप इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. And what I wish for you is genuinely a healthier relationship in the times to come. On that note, agar aapki bhi zindagi mein something really bothersome is shaking you up, why don't you hit me up? We'll talk about it. Mera naam hai Mirchi Roshi, naam ki spelling hai Rochie. So go ahead, do what you need to do, lekin kahin mat jana jana, kyunki wapis to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot.

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन दी बात होर सी।
1: 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
1: शशि वो मैनहट्टन है।
0: मैनहट्टन
2: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी?
1: टैन मतलब वो धूप की छाप।

पर बैठा, जिसके भी बस की वो आके पकड़ ले। इनसे गेम क्रैक की नहीं हो रहा ना, हिट कोई ट्रैक की नहीं हो रहा ना। यहाँ फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कम बैक की नहीं हो रहा। बादशाह है नाम मेरी जान, प्यार से मुझको वो बैडी बोलती है। गेम में लॉन्डो का बापू बेबी, एक तू ही थोड़ी है जो मुझे डैडी बोलती है।

झिमके मेरे घंटे पे प्रेस। बैड बॉय शाह कैसे तुझे तेरे बस का लगा, न मुझे एसएमएस का लगा, रही ना किसी काम धाम की, जब से लड़की को चस्का लगा।

0: Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot.
1: Mirchi, it's hot.

Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.

0: हर हफ्ते मैं यहां आता हूं 20 गाने आप और ये काउंटडाउन। लेकिन आज एक बात कहनी है पहले। बॉलीवुड में बहुत शोर है, बहुत चमक, बहुत पीआर, बहुत नॉइज, और उस शोर में कुछ गाने होते हैं जो सच में फील किए गए हैं, लिखे गए हैं, जिए गए हैं। वो गाने अलग सुनाई देते हैं हमेशा। आज का शो उन गानों के बारे में है, उन लोगों के बारे में है जिन्होंने शॉर्टकट्स नहीं लिए, जिन्होंने शोर नहीं मचाया, बस काम किया और वो काम आप तक पहुंचा इस काउंटडाउन के जरिए, मेरे जरिए। हाय, आई एम सुरेन सुंदरम एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव हिंदी म्यूजिक काउंटडाउन। और मैं आपको वो सब सुनाऊंगा जो डिजर्व करता है सुना जाना, नंबर 20 से नंबर 1 तक। तो शुरू करते हैं विद गाना नंबर 20, रणवीर सिंह, धुरंधर, इश्क जलाकर।
1: नंबर 20।

और फिर नंबर 19 पर एक डेब्यू सॉन्ग आदित्य रिखारी और साथ में है श्रेया घोषाल जो 2026 में बिल्कुल एक जेंजी सिंगर की तरह सुनाई दे रही हैं। दिस वन इज कॉल्ड दिल वाले चोर फ्रॉम पति पत्नी और वो दो। क्लियरली चीटिंग इज कूल। नंबर 19।

0: ये था क्या कमाल है नंबर 18 इस हफ्ते। एआर रहमान का म्यूजिक, इरशाद कामिल के अल्फाज और दिलजीत की आवाज। और इन गानों के बावजूद लोग कहते हैं नहीं यार, पुराने गाने ही अच्छे होते थे। मैं हूं सुरेन और आज मैं उस डिबेट को सीधा खत्म करना चाहता हूं। इरशाद कामिल, जिनसे ये बात मैंने खुद पूछी, उनका जवाब सुनिए।
1: Actually, I don't miss anything in today's song. क्योंकि हम पिछले पुराने गाने ना भाई साहब सिर्फ 200 सुन रहे हैं, आपको पता है, और पिछले 100 साल से हम फिल्में बना रहे हैं। आलमारा हमारी पहली पिक्चर थी जिसमें गाने थे, और अब तक हम पिक्चरें बना रहे हैं और रेडियो पे सिर्फ 200-250 गाने चलते हैं पुराने, वही बार बार जो हिट हो गए हैं, और उसके अलावा वो सब आप नहीं सुनते हैं जो आप तक पहुँचा ही नहीं है या आप अप्रोच नहीं कर रहे हैं। आज के जमाने में भी आप आज के टाइम को थोड़ा सा वक्त दीजिए, 10-15 साल दीजिए, आप फिर यही बात दोहराएंगे कि पीछे वाले जो गाने थे वो बहुत अच्छे होते थे, आज से 20 साल पहले जो गाने लिखे जा रहे थे। So, I don't miss anything.
0: इरशाद भाई ने जो कहा वो सिर्फ सच नहीं है, वो अनकंफर्टेबल सच है। हम 250 गाने सुनते हैं लेकिन बाकी के 50,000 का क्या, वो दब गए, दे वो फॉरगॉटन। इसलिए पुराना जमाना परफेक्ट लगता है क्योंकि उसके बेकार गाने इतिहास ने ऑलरेडी डिलीट कर दिए। आज का म्यूजिक वीक नहीं है, आज का म्यूजिक बहुत ज्यादा है, एंड उसमें से भी एक चन्ना मेरेया है, एक सैयारा है, और ये वाला गाना भी है, क्या कमाल है। ये गाने अगर 1975 में आते तो आज हम इन्हें क्लासिक सॉन्ग्स कहते। मेरे लिए आज का पिक ऑफ द वीक भी इरशाद कामिल का ही है। रहमान साहब का म्यूजिक, इरशाद भाई ने क्या कमाल लिखा है, एक गाना जो ऑलरेडी क्लासिक बन चुका है, संग बाय मोहित चौहान, दिस इज तुम हो फ्रॉम रॉकस्टार। पिक ऑफ द वीक।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: नंबर 7
2: Say whoa!

0: ये था वाओ नंबर 7 लाउड कलरफुल 2026 की ब्लॉकबस्टर एनर्जी एग्जैक्टली एज एडवर्टाइज्ड। बट लेट मी टेक यू बैक टू 2006, 20 साल पहले। वो साल याद है, धूम, क्रिश, डॉन, लगे रहो मुन्ना भाई, बड़ी बड़ी फिल्म्स, बड़ा नॉइज और उससे भी बड़ी ओपनिंग्स। लेकिन आज 2026 में अगर मैं आपसे पूछूं कि उस साल की सबसे एवरलास्टिंग एल्बम कौन सी थी, वो कोई बड़ी फिल्म नहीं थी। वो एक मिड बजट फिल्म थी जिसका नाम था गैंगस्टर। कंगना रनौत, अनुराग बासु डायरेक्ट कर रहे थे, शाइनी आहूजा थे लीड में। वो कहानी हम दोबारा नहीं खोलेंगे। एंड ऑफ कोर्स यू हैड द मोस्ट म्यूजिक हैवी एक्टर इमरान हाशमी। लेकिन प्रीतम दान ने उस फिल्म के लिए जो म्यूजिक बनाया वो फिल्म से बड़ा निकला, कास्ट से बड़ा निकला, कॉन्ट्रोवर्सी से बड़ा निकला। और इस हफ्ते नंबर 6 पे है मैं और तू फ्रॉम धुरंधर 2, एक और गाना जो शायद अपनी फिल्म से बड़ा बन सकता है, लेकिन ये वक्त ही बता पाएगा। लेकिन गैंगस्टर के एक गाने ने वक्त का इंतजार नहीं किया, वो ऑलरेडी क्लासिक बन चुका था जिस रात वो रिलीज हुआ। 2 बजे की नींद, किसी का नाम, भीगी आंखें, ये सिर्फ गाना नहीं है, ये एक फीलिंग है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। On a very special request, this is James with Biggie Biggie.
1: Special request song.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
1: नंबर 5.

तेईस हफ्ते मैन रियली गहरा हुआ अरिजीत सिंह का गाना जो हर बार नया लगता है। लेकिन कुछ दिन पहले आई थिंक रात के 3 बज रहे थे और मैं बस सोने ही जा रहा था एंड फिर एक वर्जन सुन लिया।

तेरा हुआ। इस बंदे का कोई नाम नहीं है, ये अपना चेहरा तक नहीं दिखाता। बस यूट्यूब पे एक चैनल है कॉल्ड मेलोडिक डैश, बस 3000 लोग जानते हैं इसे। दैट्स इट, दैट्स हिज सब्सक्राइबर काउंट। लेकिन वो अकूस्टिक गिटार जो इतना अग्रेसिव है, तार पे तार, जैसे कोई उस दर्द को अंदर रखने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। द सॉन्ग इज इन सॉफ्ट, इट्स नॉट जेंटल, लेकिन इतना खूबसूरत है, इसलिए तो मैं इस गाने पे आके रुक गया। और वो आवाज, क्योंकि अरिजीत ने जिस तरह गाया है वहां पर भी दर्द है, लेकिन यहाँ अंदर से बिल्कुल एक अलग दर्द निकलता है। और यही तो म्यूजिक की सबसे बड़ी सच्चाई है, एक ही गाना हजार लोगों के हाथ से गुजर के हजार अलग कहानियां बन जाती हैं। मेलोडिक डैश की कहानी मुझे 3 बजे जागने पर मजबूर कर गई। लेकिन अभी के लिए, इस फीलिंग के लिए, एक और ऐसी आवाज जिससे मैं दूर नहीं हो पाता, नंबर 4 पे कोई और हो ही नहीं सकता, विशाल मिश्रा और उनकी दीवानियत। नंबर 4।

0: आरी आरी अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा। अगेन नंबर टू दिस वीक। माय नेम इज सुरेन सुंदरम और ये है इस काउंटडाउन का आखिरी सेगमेंट। तो मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। बॉलीवुड में आज जो दिख रहा है वो सच नहीं है, वो रिव्यू खरीदा गया है, वो ट्रेंड प्लांट किया गया है, वो पब्लिक इज लविंग दिस फिल्म, एक बिल है भाई जो सब भर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद करण जौहर कह रहे हैं।
1: Bollywood should stop doing PR. It would be much better and they should let their achievement speak for itself. Because unfortunately, all of PR is now paid PR. So if you want to say you're looking gorgeous, you just have to pay. If you want to say that you're the best actor on planet Earth, you have to pay. So I think we are on overdrive mode where it comes to PR. But now everything is available at a price and that is something that could be deeply upsetting because then you really can't gauge what's connecting and what's not. Because like now you're looking at everything and you're like, are people really liking it or have they been paid to like it? Like, I don't know. I can't tell half the time. Like, you know, many a time it's confusing me and because even I'm sometimes paying for it. So I don't know.
0: I don't know. ये वही बंदा है जिन्होंने इस मशीन को बनाया और अब वो खुद नहीं जानते कि ये मशीन आखिर क्या कर रही है। जरा सोचिए, दैट इज द ट्रूथ। एंड देन और फिर एक और कहानी आती है। दिसंबर 5, 2025 धुरंधर, मार्च 19, 2026 धुरंधर 2। रणवीर सिंह कोई इंटरव्यू नहीं, आदित्य धर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, वॉज देयर पेड पीआर? एब्सोल्युटली जीरो। ऑर्गेनिक पीआर? Again, absolutely zero. सिर्फ एक फिल्म, उसके दो हिस्से और उसकी आवाज। 5 महीने बाद धुरंधर इज बॉलीवुड्स हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म एवर और इस काउंटडाउन पे जो गाना नंबर वन है 12 हफ्तों के लिए, नो पेड पीआर, इट्स अ जेन्युइन बैंगर। करण ने कहा था, लेट योर वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ एंड रणवीर एंड आदित्य धर डिड जस्ट दैट। They let their work scream for themselves. This is Shararat, Dhurandhar, 12th week on number 1.
2: Number 1.

सो ये था मिर्ची डॉट 20 का लेटेस्ट एपिसोड, 20 गाने एक जर्नी और आप जो इस सफर को मायने देते हैं। म्यूजिक वही जीतता है जो सच में लिखा गया हो, बाकी सब वक्त तय करता है। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20, सरेन ओवर एंड आउट।

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
1: सुन रहे हैं आप। बंदी का नाम है आरजे कनिका। इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की। गाना नंबर 10 पर इस गुरु रंधावा का गाना, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, उन्हीं की आवाज। गाने का नाम है वोग। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे गिर के वोग इस हफ्ते ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद शुभ का नया नवेला गाना मूव्स इस हफ्ते डेब्यू मार के ऑन गाना नंबर 9। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
0: Number 10.

0: गुरु रंधा की आवाज में एक गाने का नाम है वोग, दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। मैं गुरु रंधावा का गाना सुनती हूँ, सुन के तो मुझे पता है इट्स अ गुरु सॉन्ग, पर अक्सर नाम नहीं याद रहता, बिकॉज मोस्टली गाने मुझे एक जैसे साउंड करते हैं। पर कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कहीं से उसका एक इंस्ट्रूमेंटल या इंट्रो म्यूजिक भी सुन लें तो पूरा गाना याद आ जाता है।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Bindi ka naam hai RJ Kareka. Instagram par jao, mujhe follow karo. Follow karna ekdam free hai. Mujhe pata hai aap phone hi chala rahe the apna. @RJKareka on Instagram par aake quickly say hello. Koi gana share karna ho bindaas aake hit me up. कभी ऐसा होता है ना, दोस्तों के साथ बैठे हैं, रेडियो पे कोई गाना बस शुरू हुआ है, इंट्रो म्यूजिक प्ले हुआ है एंड आपने एकदम बता दिया कि अरे दिस इज दिस सॉन्ग, एकदम फुल ऐसे सुप्रीम फीलिंग आती है दैट आई एम बेटर देन यू ऑल, मैं ज्यादा कल्चरली रिच हूँ, मैं ज्यादा अच्छा म्यूजिक जानती हूँ तुमसे, बहुत सही फीलिंग होती है, शाबाश, पैट ऑन योर बैक। लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं कि जैसे ही वो इंट्रो म्यूजिक बजता है आपको नहीं, गाड़ी में चारों दोस्तों को गाना याद आ जाता है, बिकॉज वो गाना, वो इंट्रो म्यूजिक इतना आइकॉनिक होते हैं। पिछले हफ्ते हमने आपको एक गाने का इंट्रो म्यूजिक सुनाया था एंड आपको गेस करना था कौन से वाला गाना है। प्लेइंग इट राइट अगेन फॉर यू। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे राइट आंसर्स आएंगे, बिकॉज ये गाना एक साल पुराना भी नहीं है। गाने का नाम है अर्ज किया है बाय अनूप जैन, इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। इस काउंटडाउन पे आगे ये गाना आने वाला है, कौन से नंबर पे उसके लिए वेट करना पड़ेगा, पर जितना पॉपुलर ये गाना हो चुका है उतना ही सिनोनिमस ये इंट्रो पीस हो गया है। @RJKareka ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ाओ, मैं एक और गाने का इंट्रो म्यूजिक आपके लिए प्ले करने वाली हूँ। ध्यान से सुनो और बताओ ये कौन सा गाना है। जल्दी जल्दी आके @RJKareka और इंस्टाग्राम पर मुझे बताओ, मेरे दिमाग में तो गाना, गाने के विजुअल्स, वीडियो सब आ गया है। शो में आगे चल के ये गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अभी काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हैं दिलजीत दोसांझ की आवाज में, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है डीलर, पिछले हफ्ते से 4 पोजिशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडिया टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 8।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट
0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 6।

0: पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम गया है ये गाना। गाने का नाम है ए अजनबी, आदित्य रिखारी की आवाज अलोंग विद कुटले खां एंड रैवेटोर। इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। ए अजनबी वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले संजू राठौड़ का नया नवेला गाना, गाने का नाम है बैंगल्स, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका। दिस इज गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड हम आपके लिए लेकर आते हैं। इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। द शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक। लेकिन म्यूजिक की बात पता है क्या होती है? इट मेक्स यू ट्रैवल इन टाइम। कोई भी धुन कभी भी हमको जिंदगी के किसी किस्से में ले जाती है। लाइफ की मेमोरीज की जो बुक लिखी हुई है हमने, उसका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 कभी भी खुल जाता है। अभी रिसेंटली एक वीकेंड पे मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं कैफे में थी, थोड़ी कॉफी पी रही थी, आई वॉज एंजॉइंग द वाइब, सेल्फी खींच रही थी, आई वॉज ट्राइंग टू बी इन द मोमेंट, एंड एक गाना चलता है उस कैफे में। वो गाना सुनते ही मैं अपनी लाइफ की मेमोरीज के चैप्टर नंबर 2019 में जा पहुंची। वो गाना मेरे को बिल्कुल ट्रांसपोर्ट करके इसी स्टूडियो में लेकर आया जहां मैंने वो गाना आपके लिए सबसे पहले प्ले किया था।
2: वास्ते जहां भी दूं मैं गवाही मां भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं।
0: गाने का नाम है वास्ते, ध्वनि भानुशाली, निखिल डिसूजा का गाना। एंड ऑनेस्टली मुझे लगा भी नहीं था कि मुझे एंड टू एंड इस गाने के लिरिक्स याद रहेंगे, बट आई हैड आई कॉन्टैक्ट विद एक दो लोग जो मेरे राइट वाली टेबल, लेफ्ट वाली टेबल पे बैठे थे, एंड वो भी इस गाने के साथ लिप सिंक कर रहे थे। एंड आई रियलाइज दैट सम सॉन्ग्स हैव एन इम्पैक्ट जो आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हो। आई रिमेंबर 2019 में दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉप सॉन्ग्स ऑफ द ईयर। इनफैक्ट गाना इंडी टॉप 10 का बेस्ट ऑफ 2019 में वास्ते वॉज नंबर 1 सॉन्ग। इस गाने ने कई सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए। ये पहला ऐसा नॉन फिल्म गाना था जिसने यूट्यूब पे 1 बिलियन व्यूज क्रॉस किए। उसके बाद कई गानों के साथ ऐसा हुआ, बट आई हैव टू रिमाइंड यू दैट इस गाने ने वो इफेक्ट क्रिएट किया जो एक फिल्म का गाना करता है। जहां इट डजंट मैटर कि ये गाना कौन सी फिल्म पे है, किस पे दर्शाया है, अगर कभी आपने सुना तो मेरे जैसे उस कैफे में बैठे बैठे आप एक गाना गाना शुरू कर देते हैं। तो अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग, तनिष्क बागची की कॉम्पोजिशन, ध्वनि भानुशाली की आवाज, लेकिन इस गाने के स्टार है निखिल डिसूजा। ट्रस्ट मी, ये गाना मैंने यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम रील्स, हर जगह सुना है, पर कुछ तो बात है, ये गाना रेडियो पे कुछ ज्यादा ही खूबसूरत साउंड करता है। दिस इज वास्ते प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: दूं।
1: What a song! तनिष्क बागची की कॉम्पोजिशन है, ध्वनि भानुशाली है निखिल डिसूजा की आवाज, अराफत महमूद के लिरिक्स हैं राधिका राव एंड विनय सप्रू ने ये वीडियो बनाई। Everything about this song is iconic. For the real OG pop culture fans, मैं एक इंडी पॉप क्विज पूछूंगी आपको. It's a difficult one. At RJ Kanega on Instagram पर आओ और मुझे बताओ इस गाने वास्ते में ध्वनि भानुशाली का ब्रेकअप होता है, ठीक है? वो ब्रेकअप कितने बजे होता है मुझे आके at RJ Kanega पर बताओ. मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है आपको पता होगा. Now back to the countdown. अगले वाले गाने की बारी. The social media sensation गाने का नाम है शीशा. मिट्टर और की आवाज इनकी कॉम्पोजिशन. मिट्टर और स्वरा वर्मा की आवाज में शीशा इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
2: नंबर 5.

0: Diljit Dosanjh, The Man You Are, and what a collaboration with Sia, gaane ka naam hai Ranja. Pichle hafte se ek nahi, do nahi, teen nahi, char bhi nahi bro. Pure 6 positions super jump karkar, Ranja was this week on Gaana number 4.
1: Gaana Indie Top 10. Gaana Indie Top 10. Kanika ka saath.
0: मिर्ची सुन रहे हैं आप. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक. वो कहते हैं हर गाना अपना लिस्नर ढूंढ लेता है, पर पता नहीं कुछ गाने हमको रात को ही ज्यादा अच्छे क्यों साउंड करते हैं. लाइक रियली थिंक अबाउट इट, देयर आर सम सॉन्ग्स जो आपने दिन में 2-3 बजे सुना तो ठीक है, यू विल गिव इट लाइक अ 6/10. वही गाना 2 AM पे हिट्स राइट इन द फील्ड्स, दिल के सारे इमोशंस उमड़ जाते हैं. और ऐसा ही एक गाना मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है, उसका नाम है जुल्फे बाय साहिल. दो बड़ी टॉर्चेस के साथ इस गाने पर हम एक स्पॉटलाइट मारना चाहते हैं, बिकॉज ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल आर्टिस्ट. साहिल ने अपनी जर्नी बहुत सारे आर्टिस्ट की तरह कवर्स गाकर ही शुरू करी थी, मैशअप्स गाई, वहीं से अपनी ऑडियंस बिल्ड करना शुरू किया. एंड धीरे धीरे जब लोग उन्हें ट्रस्ट करने लगे, उनके म्यूजिक के साथ जुड़ना शुरू करे, उन्होंने अपना ओरिजिनल म्यूजिक अपने फैंस के साथ शेयर किया. एंड फैंस ने कस के प्यार दिया, बहुत ओपन रहे उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए, एंड दे केप्ट आस्किंग फॉर मोर न्यू सॉन्ग्स. उन्हीं में से एक गाना है जुल्फे. इट्स अ प्रॉपर लेट नाइट कन्फेशनल सॉन्ग, ऐसा मोमेंट जब आप किसी को कॉल नहीं करते हैं लेकिन उनके बारे में सोचना बंद भी नहीं कर पाते हैं. रियलिटी

0: साजा मिटा। साहिल की आवाज में दैट वॉज जुल्फे फॉर ऑल द लेट नाइट थिंकर्स। अगर आप थोड़ा ओवर थिंक करते हैं ये गाने को बैकग्राउंड में लगा कर करना, एटलीस्ट बेटर रहेगा। एट आरजे कनिक ऑन इंस्टाग्राम पर आके मेरे साथ अपने 2 AM वाली प्लेलिस्ट शेयर करो। आई माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ बैक टू द काउंटडाउन। अगले वाला गाना इज मेरा आपका सबका 2 AM, 2 PM, 3 PM, 5 PM सॉन्ग। ये गाना 15 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार है अनूप जैन की आवाज में। गाने का नाम है अर्ज किया है। इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके अर्ज किया है इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3। यू आर लिसनिंग टू गाना इन द टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
1: नंबर 3।

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची

0: गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबको ये गाना बहुत पसंद है। 23 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप किया है करण औजला इक्की का बॉयफ्रेंड दिस वीक ऑन गाना नंबर 2।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: You are listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show which is all about the hottest pop music of the week. Gaana number 10 se gaana number 2 ka safar hum pura kar chuke hain. Before we move on to the numero uno song of the week, it's time for what we call
1: Kanika's Kasat Classic.
0: हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वाज एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है तू बाय द वन एंड ओनली सोनू निगम। सोनू निगम का नाम ही काफी है, ही इज अ फुल रेंज म्यूजिशियन। जितने पॉपुलर सोनू निगम एज अ हिंदी प्लेबैक सिंगर हैं, उतने ही पॉपुलर वो एज अ पॉप स्टार भी हैं। नाउ थिंक अबाउट इट, इंडिया में पॉप स्टार्स कब बने? मतलब गाने बहुत बड़े हो जाते थे, पर उन गानों को हम वो गाना किस मूवी में आया है या उस गाने में कौन सा एक्टर एक्ट्रेस है उससे याद रखते थे। देन केम अ वेव ऑफ आर्टिस्ट अर्ली 90s लेट 90s में, ये पॉप स्टार्स जैसे कि सोनू निगम, शान, लकी अली, जिन्होंने इंडियन इंडी पॉप म्यूजिक को आगे बढ़ाया, जिनके गानों की म्यूजिक वीडियो में कोई बड़ी फिल्मों के हीरो नहीं बल्कि आर्टिस्ट खुद फीचर होते थे, एंड सोनू निगम वाज द पोस्टर बॉय ऑफ दैट चेंज। अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाना शुरू किया उन्होंने। ऑल्दो वो बहुत बड़ी फिल्मों के लिए ऑलरेडी प्लेबैक सिंगिंग कर रहे थे, बट उन्होंने इंडिपेंडेंट पॉप म्यूजिक को भी उतना ही स्पेस एंड अटेंशन दी, एंड उस फेस का ये सबसे मस्ती भरा गाना है। The song is young, very peppy, एक flirtatious energy है, and किसी movie का scene बनने की जरूरत नहीं थी, because in its own, इस गाने ने अपनी एक cinematic दुनिया बनाई। इस गाने में सोनू निगम के साथ बिपाशा बासु is the featuring actor. It was a youth favorite back then, it is till now, तो अपने radio sets की volume बढ़ा दीजिए। सोनू निगम की आवाज में the forever iconic गाने का नाम है तू, it's playing right next for you on our cassette classic this week. बंदी का नाम है कनिका, enjoy.

यार ये गाना सुनते हुए लगता है कि टोपी पहनो और उस टोपी को उल्टा कर दूं. समथिंग अबाउट दिस सॉन्ग विच जस्ट सर्व्स स्वैग. सोनू निगम की आवाज में दैट वॉज टू ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक. एल्बम का नाम है किस्मत, म्यूजिक है बिजू का एंड लिरिक्स हैं देव कोहली के. आई कांट बिलीव अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्वैग वर्ड यूज किया बिकॉज मुझे क्रिंज होता है उस वर्ड से. सो टू मेक माई सेल्फ फॉरगिव दैट एंड फॉर यू टू फॉरगिव मी, सीधा बढ़ते हैं इस हफ्ते के न्यूमेरो उनो गाने की टूवर्ड्स. पिछले हफ्ते से अपनी पोजिशन पर बरकरार ये गाना हिस्ट्री बना रहा है. गाने का नाम है बैरन बाय दिस सुपर टैलेंटेड म्यूजिकल एक्ट कॉल्ड बंजारे. उन्हीं की आवाज, उन्हीं की लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन 6 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. थर्ड टाइम इन अ रो बैरन इज ऑन गाना नंबर 1 एंड इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनका. एंजॉय. नंबर 1.

0: Himichi, it's hot.
1: Saathi re, thoda theher ja, abhi raaste

0: Mitchy, it's hot.
1: Do tole ki mundri la de, din tole ka.

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

Mirchi. It's hot.

मिर्ची।

0: और झुमका
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
2: मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Yeah. I like the way you move right there.

0: मिर्ची, इट्स हॉट। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और तुम सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। यहाँ पर चाय गर्म है, गॉसिप गर्म है और वेदर वो कभी कभी ट्रस्ट इश्यूज दे देता है। आज सुबह अगर तुम ट्रेन पकड़ रहे हो, जूम कॉल पर फेक स्माइल के साथ ज्वाइन कर रहे हो या बस किचन में बर्तनों के साथ लड़ाई कर रहे हो, आई गॉट यू। एंड ऑनेस्टली देसी एक्सपैट लाइफ भी एकदम फुल ऑन बॉलीवुड मल्टीवर्स की तरह है, राइट? सुबह सुबह गुड मॉर्निंग टीम और शाम को मम्मी का शादी कब कर रहे हो वाला फेस टाइम अटैक हो जाता है। और जो लोग शादीशुदा है, दे शुड बी लकी। आज के महंगाई के जमाने में अब तो शादी करना भी बड़ा मुश्किल हो चुका है, लेकिन आसान है इस शो पर मिलना फुल पैसा वसूल कॉम्बो, यानी कि मस्त मिर्चीदार म्यूजिक, फिल्मी फील्स, स्पाइसी स्टोरीज, अराउंड द वर्ल्ड की खबरें, थोड़ा सा लाइफ का केओस जिस पर हम बात करने वाले हैं, कुछ लाइफ हैक्स एंड वो देसी वॉर्म्थ जो सिर्फ हमारे लोग ही समझ सकते हैं। सो वॉल्यूम बढ़ाओ, स्ट्रेस को भूल जाओ। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। मुझे सुन रहे हो तो मॉर्निंग्स पर मुझे देख सकते हो इंस्टा और एक्स पर जाकर। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस। फटाफट से फॉलो करो मुझे MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मुझसे अभी बात कर सकते हो 9033 मिर्ची इज माय नंबर 9033647244। राइट नाउ मिर्ची देयर आर बैंगर्स का टाइम है। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
1: लेट्स गो crazy.

गुड मॉर्निंग क्यूटीज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड ऑफ कोर्स दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स पर टाइम ट्रैवलिंग टाइम, जहां पर हम आज की डेट को रिवाइंड करके पता करेंगे कि फ्लैशबैक में आखिर हुआ क्या था। 1551 में पेरू में सैन मार्कोस यूनिवर्सिटी बनी थी आज के दिन, इट इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन अमेरिका। 1638 में बैक होम शाहजहां ने दिल्ली का रेड फोर्ट बनवाना स्टार्ट किया था। हाँ जी, ये वही आइकॉनिक फोर्ट है जहां से पीएम स्पीच देते हैं। 1937 में बीबीसी ने दुनिया का फर्स्ट वर्ल्ड वाइड रेडियो ब्रॉडकास्ट किया था। इमेजिन वो आरजे बोल रहा होगा, माइक चेक, और आज देखो हम यहाँ पर वाइब्स चेक कर रहे हैं। 1967 में द जिमी हेंड्रिक्स एक्सपीरियंस ड्रॉप्ड देयर डेब्यू एल्बम। आर यू एक्सपीरियंस्ड? अरे भाई, हम तो बस एक्सपीरियंस्ड ही रहते हैं। और आज है इंटरनेशनल नर्सेस डे भी, ऑनरिंग द लेजेंडरी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। मैसिव लव टू ऑल द नर्सेस आउट देयर, यू गाइज आर सुपर हीरोज। और आज का लेसन, हिस्ट्री हो या लाइफ हो, ड्रामा मिर्चीदार होना चाहिए। इसलिए फटाफट से जाकर मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर ड्रॉप इन योर मैसेजेस। 9033 मिर्ची इज माय नंबर, दैट्स 9033647244। फिलहाल मिर्चीदार गाने लगाते तुम्हारे लिए, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

हेलो देयर, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में, एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। आरसीबी के बैटर टिम डेविड को लगा एक्साइटमेंट में थोड़ा सा बाउंड्री क्रॉस कर देना इज ओके, बट आईपीएल सेट बेटा कैमरा सब देख रहा है। आफ्टर आरसीबीज विन अगेंस्ट एमआई ऑन संडे, टिम डेविड वॉज फाइन 30% ऑफ हिज मैच फी बिकॉज ही फ्लैश्ड हिज मिडिल फिंगर ड्यूरिंग द सेलिब्रेशंस। अरे भाई, विक्ट्री पोस्ट था ये, इमोशनल डैमेज काहे ले लिया। आईपीएल ने बोला है कि उनको कोड ऑफ कॉन्डक्ट का आर्टिकल 2.6 ब्रेक करने पर ये सजा मिली है, which basically means gestures जो obscene, offensive या insulting हो, वो no ball category में आते हैं। और सिर्फ fine ही नहीं, दो demerit points भी मिल गए उनको। मतलब उनकी रिपोर्ट फिलहाल अच्छी नहीं चल रही है। लेकिन honestly यार, स्पोर्ट्स में कभी कभी ना adrenaline हावी हो जाता है प्लेयर्स पर। एक सेकेंड तुम काम एंड कंपोज्ड हो, एंड अगले ही सेकेंड यू आर एक्टिंग ऑल वॉलेटाइल। मीनवाइल MI वर्सेस RCB में MI तो बाहर हो गया और राइवलरी ने काफी जोर पकड़ लिया है। MI फैंस का दिल टूट गया है, लेकिन ये गेम है, इसमें एक टीम हारेगी तो दूसरी जीतेगी। फिलहाल मिर्चीदार बैंगर्स का टाइम है ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग मेरे हुडी पे भरोसा रखने वाले देसी पीपल, दिस इज योर गर्ल प्रिसला विद यू, सुन रहे तो मर्जी मॉर्निंग्स। और अब चाय गर्म है या वेदर, लेट्स फाइंड आउट। अभी फिलहाल हो रहा है 44 डिग्री फारेनहाइट, इट्स क्लियर आउटसाइड, लेकिन विंड जो है वो एक्स्ट्रा एटीट्यूड दिखाते हुए हमें फील करा रही है 42 डिग्री फारेनहाइट के आसपास। लेकिन वेदर कह रहा है क्यूट जैकेट तो पहन ही लो आज के दिन। गुड न्यूज दो ये है कि पूरा दिन क्लियर स्काइज रहने वाला है, यानी नो रेन का ड्रामा, नो सरप्राइजेस, अम्ब्रेला कैरी करने की जरूरत नहीं है। लास्ट 24 आवर्स में जीरो प्रेसिपिटेशन था और अगले 24 आवर्स में भी जीरो प्रेसिपिटेशन है। आज का टेम्परेचर रेंज रहेगा 44 डिग्री फारेनहाइट से 67 डिग्री फारेनहाइट तक। सो सुबह सुबह तुम वेयर आर माई ग्लव्स वाले मोड में रहोगे और आफ्टरनून आते आते व्हाई एम आई स्वेटिंग इन माई स्वेटर वाली एनर्जी आ जाएगी। वैसे आज का हाई इज एक्चुअली वार्मर देन यस्टरडे, कल का मैक्स गया था 62 डिग्री फारेनहाइट तक और आज जाने वाला है 67 डिग्री फारेनहाइट तक। सो आज भी लेयर के प्लेयर बनना है गाइज। देसी मॉम्स हमेशा हमें वार्न करती कि बेटा स्वेटर पहन लो वरना ठंड लग जाएगी, आज उनकी बात सुननी है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है एंड ऑफ कोर्स बाहर निकलते वक्त अपना सन प्रोटेक्शन SPF 50++++ लगाकर ही जाना है। अभी मिर्ची सुनते रहना है और मुझे फॉलो करना है, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर मुझे ढूंढो, और व्हाट्सएप करना चाहते हो तो 9033 मिर्ची इज माई नंबर, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट। Yeah.

गुड मॉर्निंग माय देसी ब्रिगेड, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. वेलकम टू मिर्ची आवका 3. अब नंबर पर ब्राजील में लैटिन अमेरिका का पहला कंसेक्रेटेड लॉर्ड गणेशा आइडल ऑफिशियली एस्टैब्लिश हुआ ड्यूरिंग अ ग्रैंड प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी एट सेंट्रो कल्चरल विश्वविद्या. इंडियन एम्बेसडर दिनेश भाटिया और ब्राजीलियन स्पिरिचुअल टीचर जोनस मसेटी भी इवेंट में प्रेजेंट थे. नंबर टू पर ईरान ने ऑफिशियली सपोर्ट किया चाइना प्रेजिडेंट शी जिनपिंग के 4 points पीस प्रपोजल को एम्ड एट ब्रिंगिंग मोर स्टेबिलिटी इन द मिडल ईस्ट रीजन. इरानियन एम्बेसडर अब्दुल रेजा रहमानी फाजल ने इनको लॉन्ग टर्म पीस और डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क कहा है. एंड नंबर थ्री पर रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन यूएस फीलिंग्स आर क्रिएटिंग डिस्कशन अराउंड क्लेम्स मेड रिगार्डिंग सीजफायर कम्युनिकेशन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर. डॉक्यूमेंट्स रिपोर्टेडली शो मल्टीपल आउटरीच इंटरक्शंस बिटवीन पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव्स एंड यूएस लिंक्ड ऑफिशियल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड. एज ऑलवेज गाइज, इंटरनेशनल मैटर्स आर कॉम्प्लेक्स, सो हेडलाइन से पहले कॉन्टेक्स्ट को जरूर पढ़ लेना. एंड दैट वाज मिर्ची आवर का 3 विद मी प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

Hey, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड यू आर ट्यून्ड इन टू मिर्ची मॉर्निंग्स। तो आज का बॉलीवुड बज ये है कि ऑथर अमीश त्रिपाठी ने ऑफिशियली क्लियर कर दिया है कि रणवीर सिंह ने अब तक द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा ट्रिलॉजी के राइट्स परचेज नहीं किए हैं। हाँ जी, सोशल मीडिया ने फिर कमिंग सून टू कंफर्म ब्लॉकबस्टर बना दिया था इसे कुछ दिन पहले। अमीश का कहना है कि शिवा ट्रिलॉजी के राइट्स अभी भी उनके पास ही हैं एंड नथिंग हैज बीन साइंड विथ एनीवन एज येट। He also mentioned कि he has a huge respect for Ranveer Singh. So basically यहाँ पर कोई controversy नहीं है, लेकिन imagination का overacting चल रहा है netizens का, जिसको उन्होंने clear कर दिया है। Earlier reports कह रहे थे कि Ranveer Lord Shiva का role play करने वाले हैं in the proposed adaptation of the book. और तुमको पता है fans ने already teaser trailer दिमाग में edit भी कर दिया था। Slow motion entry हुई त्रिशूल, wind machine, background chanting के साथ, काफी cinematic था ट्रेलर। लेकिन ये एक रिमाइंडर है कि बॉलीवुड की न्यूज में रिपोर्टेडली वर्ड को लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इंटरनेट जो है ना हमारे उस दोस्त की तरह होता है जो कहता है आई हर्ड इट फ्रॉम समवन एंड सडनली पूरे मोहल्ले को एक खबर मिल जाती है जो कि सही भी नहीं होती है। वैसे इमेजिन करो कि ये मूवी एक्चुअली बने और रणवीर सिंह इस कैरेक्टर को प्ले करें तो टिकट्स कितनी जल्दी बिकेंगे और क्या ये मूवी धुरंधर से भी बड़ी ब्लॉकबस्टर बन सकती है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मुझे बताओ। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। राइट नाउ स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स. और अब टाइम आ चुका है लाइफ को सेलिब्रेट करने का, क्योंकि आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है. आज तुम ऑफिशियली शेयर कर रहे हो अपना स्पेशल डे विद सम सीरियसली आइकॉनिक लोग, जैसे कि ऑस्कर विनिंग एक्टर रामी मलिक. ऑल्सो बर्थडे ट्विंस में है मेलन एकमैन, बेटर कॉल सॉल स्टार रिया सियोन एंड जेसन बिग्स फ्रॉम अमेरिकन पाई. बेसिकली आज के बर्थडे स्क्वाड इज वन बिग बिंज वर्दी रिकमेंडेशन. और हमारे देसी सेलिब्रिटीज में है एक्ट्रेस अदा खान, एक्टर फ्रेडी दारूवाला, रेसलर प्रियंका फोगाट एंड क्लासिकल सिंगर अरुणा साईराम. एंड साथ में आज है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, एंड कॉमेडी लेजेंड जॉर्ज कार्लिन. सो आज के दिन अगर तुम भी इस धरती पर प्रकट हुए थे, यू आर बेसिकली अ मिक्स ऑफ ब्रेन्स, हार्ट एंड अ लॉट ऑफ ह्यूमर. तो आज खुद को ट्रीट करो, केक खाओ, ओवरथिंक बिल्कुल मत करो, कैलोरीज की चिंता मत करो, एंड ऑफ कोर्स सुनते रहो मिर्ची मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स. मुझे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची. दैट्स 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Hey guys, मैं हूँ प्रिस्तला तुम्हारे साथ में. This is Mirchi Morning and let's check out the gold and silver का rate update.
1: Raj Jewels wishes everyone happy and healthy morning. Today morning gold trading at $4,700 per troy ounce. $4,700 per troy ounce के साथ आज सुबह gold की prices stable हैं. सिल्वर ट्रेडिंग अराउंड $84 पर ट्राउंस के साथ सिल्वर के प्राइसेस अपवर्ड ट्रेंड पर हैं. गोल्ड बार्स सिल्वर बार्स पैम्प सर्टिफाइड 1 ounce 100 grams किलो बार्स रेडी एट राज ज्वेल्स. कम इन्वेस्ट इन गोल्ड विद RajJewels.com. थैंक यू. हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल.
0: एंड देयर यू हैव इट, गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट. जल्दी जल्दी प्लान कर लो अपनी ज्वेलरी शॉपिंग या इन्वेस्टमेंट. और फिलहाल मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: मिर्ची, it's hot.
1: Hey there, my hustlers. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. This is मिर्ची mornings और यहाँ पर अब चलने वाला है मिर्ची आवर का थ्री. अपडेट नंबर वन, लखनऊ के ज्वेलरी ट्रेडर्स फुल टेंशन मोड में आ चुके हैं क्योंकि इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली अपील किया जहां उन्होंने लोगों को वेस्ट एशियन टेंशन्स के बीच गोल्ड परचेजेस पोस्टपोन करने को कहा है, इनफैक्ट नहीं खरीदने को कहा है. सराफा ट्रेडर्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया है. उनका कहना है कि अगर लोग गोल्ड शॉपिंग रोक देंगे तो ज्वेलर्स और वर्कर्स पे इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ सकता है और इंडियन वेडिंग्स का इमोशनल डैमेज हो सकता है. नंबर टू पर NTA ने नीट अंडर ग्रेजुएट 2026 एग्जाम कैंसिल कर दिया है ड्यू टू पेपर लीक एलिगेशंस. एग्जाम दोबारा कंडक्ट होगा, एडमिट कार्ड्स जो है वो दोबारा से इशू किए जाएंगे और केस की इन्वेस्टिगेशन CBI करने वाली है. ऑनेस्टली यार, इंडियन स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी फाइटिंग सिलेबस, स्लीप डेप्रिवेशन और रिलेटिव्स के ताने और

hospitalization slipped below 3% for the first time in 4 years, while rupee touched a record low around 95.56 against the dollar amid global tension concerns. So my people, iska matlab ye hua ki aaj roughly 1 US dollar is around 95.5 rupees. मतलब अगर तुमने घर पर $100 भेजने हैं तो घर वाले बहुत खुश होने वाले हैं. Also, crude oil prices are climbing too, so investors are watching global developments very closely. Translation इसका ये है कि economy फिलहाल हमसे थोड़ी सी रूठी हुई है. अभी चलाते हैं मिर्चीदार गाने इसी बात पर. मैं हूँ प्रिस्सला तुम्हारे साथ में, सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472 4. Stay tuned and stay hot.

बस तेरा चले तो ले ले पूरा दिन, हो तैयार तू घंटे न गिन, मैं हूँ यही एच सर्विस, टेक योर टाइम शॉरी यू डिजर्व इट, हाथ में

0: गुड मॉर्निंग माय देसी फैमिली, मैं हूँ प्रिस्तला तुम्हारे साथ में. दिस इज राशि जोन नंबर वन ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स.
1: मिर्ची राशि जोन.
0: इट इज यानी मेष राशि. आज किसी कोवर्कर की जलसी रेडार पर है. स्टे शार्प एंड अवॉइड अननेसेसरी ड्रामा ट्रैप्स. बेसिकली वर्क प्लेस में निंजा टर्टल मोड ऑन कर लो. लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू. लकी नंबर इज 9. टॉरस यानी कि वृषभ राशि. बोर्डम आज तुम्हें रैंडम डिसीजंस लेने पर मजबूर कर सकता है. ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट से दूर रहो वरना 2 बजे रात को यूकेलेले ऑर्डर हो जाएगा. लकी कलर इज कोरल. लकी नंबर इज 4. जेमिनी यानी मिथुन राशि. आज किसी के साथ ओपिनियंस मैच नहीं होने वाले एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. एवरी डिबेट डजंट नीड टू बी अ टेड टॉक. आज के दिन पीस चूज करो. लकी कलर इज मिंट कलर. लकी नंबर इज 11. कैंसर यानी कर्क राशि. सब एडवाइस गोल्ड नहीं होती. ओके, आज थोड़ा रिसर्च खुद करो बिफोर ट्रस्टिंग पीपल ब्लाइंडली, स्पेशली क्रिप्टो एक्सपर्ट्स. लकी कलर इज व्हाइट कलर. लकी नंबर इज 27. लियो यानी कि सिंह राशि. क्लाउडी मूड को टुडे कॉन्शियसली फ्लिप करो. स्माइल थोड़ा सा फेक भी हो तो भी स्टार्ट करो, इवेंचुअली रियल हो ही जाएगा. लकी कलर इज सनफ्लावर कलर. लकी नंबर इज 3. वर्गो यानी कन्या राशि. फार अवे प्लेस से गुड न्यूज आ सकती है. मे बी मनी, मे बी अपॉर्चुनिटी, मे बी मम्मी फाइनली कहेगी कि बेटा थोड़ा रेस्ट भी कर लिया करो. लकी कलर इज प्लम कलर. लकी नंबर इज 22. एंड दैट्स इट फॉर फर्स्ट 6 राशिज इन राशि जोन. मैं हूं प्रिस्तला तुम्हारे साथ में और मिर्ची मॉर्निंग्स. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. अभी चलाते हैं मिर्ची दर बैंगर्स. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: हेलो, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. वेलकम बैक टू मिर्ची मॉर्निंग्स एंड ऑफ कोर्स राशि जोन नंबर टू.
1: मिर्ची राशि जोन
0: लिब्रा यानी तुला राशि. आज अगर किसी अथॉरिटी फिगर से डिसएग्री करना है तो फैक्ट्स रेडी रखो. मुझे वाइब आ रही है इज नॉट लीगल एविडेंस स्वीट हार्ट. लकी कलर इज रोज कलर. लकी नंबर इज 8. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आज इमोशनल रिएक्शन से ज्यादा स्मार्ट कम्युनिकेशन काम आने वाला है. सैवेज होना टेम्पटिंग है लेकिन क्लासी सैवेज होना ज्यादा पावरफुल होता है. लकी कलर इज मिडनाइट ब्लैक. लकी नंबर इज 31. सैजिटेरियस यानी धनु राशि, वर्क स्पॉटलाइट आज डायरेक्टली तुम पर ही है. रूल्स फॉलो करो एंड डोंट ज्वाइन अननेसेसरी ऑफिस सर्कस. पॉपकॉर्न खाओ, खुद जान जाओ, मंकी मत बनो. लकी कलर इज कॉपर कलर. लकी नंबर इज 14. केप्रिकॉन यानी मकर राशि, प्रायोरिटीज पे फोकस करो. हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते खुद कस्टमर सपोर्ट मत बन जाओ. आज थोड़ा सेल्फिश होना अलाउड है. लकी कलर इज फॉरेस्ट ग्रीन. लकी नंबर इज 6. अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, कॉलीग्स की मिस्टेक पब्लिकली पॉइंट आउट करोगे तो लॉन्ग टर्म ऑकवर्डनेस फ्री मिलने वाली है. प्राइवेट काइंडनेस टुडे इज इक्वल टू फ्यूचर फ्रेंडशिप. लकी कलर इज आइस सिल्वर. लकी नंबर इज 25. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीज यानी मीन राशि, वर्ल्ड का स्ट्रेस अब्सॉर्ब मत करो यार. आज अपनी लाइफ में थोड़ा सा लव, थोड़ा सा होप और थोड़ी सी सॉफ्ट वाइब्स क्रिएट करो. डूम स्क्रोलिंग से एनलाइटनमेंट नहीं मिलता मेरी जान. लकी कलर इज लैवेंडर. लकी नंबर इज 2. एंड दैट्स इट फॉर योर राशि जोन नंबर 2. मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स. एंड इंस्टा और एक्स पर मुझे फॉलो नहीं किया तो अभी जाकर करो. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647224. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: देवियों और सज्जनों, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है मिर्ची मॉर्निंग्स पर।
1: मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड बिफोर यू स्कोल मी फॉर दिस रियली बैड अमिताभ बच्चन मिमिक्री, लेट मी टेल यू कि रिसेंटली उन्होंने अपनी फैन मीटअप में एक बात कही। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी टीम को स्पेसिफिकली बोला टू बिहेव प्रॉपरली विद फैंस एंड वेल विशर्स, बिकॉज इन हिज वर्ड्स द पब्लिक इज आवर गॉड, एंड ऑनेस्टली दैट इज सुपर स्टार एनर्जी, हैशटैग रिस्पेक्ट। एंड अमित जी ऑल्सो मेंशन्ड दैट हिज सिक्योरिटीज बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स ऑन हिम टू, मतलब अकाउंटेबिलिटी लेवल इनकी हाइट के बराबर है उनका। मीनवाइल हम तो यार कभी कभी कस्टमर केयर से बुरी तरह बात कर ही लेते हैं, बट सीरियसली हम सबको फीलिंग तो पता ही है यार, वेदर इट्स आर्टिस्ट, रेडियो होस्ट, क्रिएटर्स या चाय वाले अंकल बैक होम, पीपल रिमेम्बर हाउ यू मेक देम फील, एंड काइंडनेस इज ऑलवेज फ्री। सो आज का टेक अवे है, बी नाइस नो मैटर वॉट द रीजन इज, से थैंक यू, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्माइल करो, बिकॉज स्माइल गोज अ लॉन्ग वे, एंड मे बी गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244, बिना कॉन्टेस्ट के भी कभी मुझे मैसेज कर दिया करो। टाटा बाय बाय फ्रॉम मी, बोलो तो प्रिसिला, मिर्ची मॉर्निंग यहीं पर खत्म हुआ, मिलूंगी कल तुम्हें सेम टाइम सेम प्लेस सेम फ्रीक्वेंसी, तब तक के लिए यू बी गुड, खाओ पियो ऐश करो एंड चिल मारो, लेकिन मिर्ची सुनते जाओ, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: आजकल हम ऐसा नहीं बोल सकते ना कि फोन में देखकर बात कर, नहीं तो बॉस पकड़ लेगा। लेकिन हाँ, स्कूल में हम ऐसे जरूर बात किया करते थे कि बुक में देखकर बात कर, नहीं तो टीचर देख लेगी।
1: सारा जमाना, सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा, एंड नाउ यू ट्यून इन विद मी ऑन मिर्ची। एंड वेल, ये बात सच है कि ऐसा भी एक जमाना हुआ करता था जिसे अब हम शायद ही जी पाएंगे, जहां हम अपने दोस्तों से इस तरीके की बातें किया करते थे ताकि टीचर्स हमें पकड़ ना लें, उनको लगे कि हम पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं, लेकिन हम एक्चुअली एक दूसरे की कॉन्वर्सेशन को लेकर सीरियस होना चाहते थे। तो किताब, जो यूजुअली हमारे लिए ऑप्शन नहीं हुआ करता था, आई मीन पीरियड खत्म होने के बाद या घर जाने के बाद, वी नेवर वुड want to open a book and talk to each other, but हाँ, of course, अपने आप को बचाने के लिए, so that हमें punishment ना मिले, डांट ना पड़े और हम बात भी कर पाएं और मैम को भी लगे कि यार हम पूरा ध्यान दे रहे हैं अपनी किताब के अंदर। बुक यूज टू बी आर ऑप्शन, बेसिकली बुक यूज टू बी आर एस्केप। हाँ, लेकिन फोन हमारा एस्केप कभी नहीं बन सकता। फोन वो साथी नहीं जो किताब हुआ करती थी बाबू मुशाय। ये उन दिनों की बात है जब हम बुक रीडर्स हुआ करते थे, अब तो हम टैब रीडर्स और फोन रीडर्स हो गए हैं। तो फिर चले क्या उसी जमाने में, मिड्डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डाल दूं? आपसे बोल देती हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: सनी देओल के हैंडपंप उखाड़ देने वाली ये जो अदा है ना, आपको क्या लगता है गदर से आई है? अजी नहीं, इसकी शुरुआत तो बॉर्डर मूवी से ही शुरू हो गई थी।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड सनी देओल, बाय गॉड, पग में इतने सुंदर लग रहे थे ना कि मैं तो तब बच्ची थी जब बॉर्डर रिलीज हुई थी, लेकिन एक पल के लिए मेरे दिल में भी ख्याल आया, यार ये तो हैंडसम है हीरो। और बॉर्डर में सनी देओल के वो जो पावरफुल डायलॉग्स थे और उस पे उन्होंने जो अपनी एक्टिंग का पावर लगाया था, वो इतने लेजेंडरी बन गए कि उनकी एक इमेज बन गई ऑफ अ पेट्रियोटिक हीरो। और वहीं से शुरू हुआ उनका हैंडपंप उखाड़ देने वाला सफर, गदर से नहीं। लेकिन सनी देओल ने मेहनत भी बहुत की थी। हाँ, उन्होंने रियल आर्मी ऑफिसर्स के साथ ट्रेनिंग ली थी सो दैट ही कुड गेट इनटू हिज कैरेक्टर, स्पेशली टैंक ऑपरेशंस और कमांड्स के बारे में जानने के लिए उन्होंने पूरी की पूरी कोशिश करी थी एंड उस कोशिश में सफल भी हुए थे। जहां सनी देओल ने अपना कैरेक्टर पकड़ने के लिए इतनी मेहनत करी थी, वहीं अक्षय खन्ना, जिनकी ये दूसरी फिल्म थी, उनको बड़ी डिफिकल्टी हुई थी शूटिंग करने में, स्पेशली इमोशनल सीन्स, क्योंकि उस टाइम पर वो मंझे हुए खिलाड़ी नहीं थे। आज की बात तो अलग है, लेकिन एट दैट टाइम उन्होंने उनका जो डेथ सीन था ना, उसको शूट करने के लिए काफी सारे टेक्स लिए थे क्योंकि वो उस कैरेक्टर में आ ही नहीं पा रहे थे यार, बट इवेंचुअली आ गए। एंड उनका डेथ सीन एज वेल एज सुनील शेट्टी का डेथ सीन इन द मूवी वॉज वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग यार। मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो बॉर्डर देखा होगा और रोया नहीं होगा। इस मूवी को नेशनल लेवल पे इतनी तारीफें और अप्लॉड्स मिले थे फॉर प्रमोटिंग पेट्रियोटिज्म एंड नेशनल यूनिटी कि इस फिल्म को इवेंचुअली काफी सारे इंडियन स्टेट्स में टैक्स फ्री कर दिया गया था। वो अलग बात है कि तब हमारे घर वाले जो थे वो हमें थिएटर में ले जाकर मूवीज नहीं दिखाते थे और ज्यादातर हम VCR पे ही मूवी देखते थे, तो हमने ये फिल्म भी VCR पर ही देखी, टैक्स फ्री एंजॉय ही नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, ये फिल्म सबने जरूर देखी है। You tune in with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi. It's hot.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: क्या आपको पता है बॉर्डर मूवी इज एक्चुअली बेस्ड ऑन रियल लाइफ इवेंट्स?
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और ये बात सच है कि बॉर्डर फिल्म वाज इंस्पायर्ड बाय द बैटल ऑफ लोंगेवाला, जो कि 1971 में लड़ी गई थी। और इस फिल्म की इंस्पिरेशन इनफैक्ट जेपी दत्ता की पर्सनल लाइफ से भी आती है। जेपी दत्ता ने ये फिल्म बनाने का सोचा एज अ ट्रिब्यूट टू हिज ब्रदर, जो कि 1971 की

इस वॉर में शहीद हो गए थे। और इस फिल्म को जितना ऑथेंटिक हो सके उतना ऑथेंटिक बनाने के लिए फिल्म मेकर्स ने इंडियन आर्मी वेटरन्स जिन्होंने इस बैटल में फाइट लड़ी थी उनसे कंसल्ट किया था। इनफैक्ट प्रोडक्शन टीम ने जो यूनिफॉर्म्स और टैंक्स लिए थे ना वो भी रियल आर्मी वाले यूनिफॉर्म्स और टैंक्स थे। हालांकि इस फिल्म की जो कास्ट थी वो बहुत बड़ी थी, सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, जैकी श्रॉफ, पूजा भट्ट, सो मेनी एक्टर्स, और इनके अलावा और भी कई सारे मंजे हुए खिलाड़ी थे अपनी अपनी फील्ड के यानी कि एक्टिंग के जो कि इस फिल्म में कास्ट किए गए थे। लेकिन जिस चीज ने इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस हिट बनाया था दैट वॉज द डेडिकेशन एंड द ऑथेंटिसिटी एंड द पेट्रियोटिज्म। इस फिल्म की शूटिंग हुई थी राजस्थान बीकानेर में जहां पर गर्मी और सैंडस्टॉर्म्स इतने खतरनाक होते हैं एंड ये वो टाइम था जब वैनिटी वैन्स भी नहीं हुआ करती थी। लेकिन स्टिल द कास्ट एंड क्रू ऑफ द फिल्म उन्होंने इन सारी सिचुएशंस में भी इस फिल्म को शूट किया क्योंकि जब वॉर चलती है ना तो वो गर्मी सर्दी बारिश ये सब नहीं देखती है। हमारे सोल्जर्स डटे रहते हैं टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री और उसी जोश के साथ इस फिल्म को भी शूट किया गया था एंड इवेंचुअली बॉर्डर ने 3 नेशनल अवार्ड्स जीते थे। यू ट्यून इन विद मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आज मम्मा हमें टोकती तो हैं कि ये क्या सुबह सुबह फोन उठा लेते हो. एंड एक्चुअली सुबह सुबह फोन उठाना तो इतना मजेदार नहीं है, लेकिन सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले एमटीवी देखना, वो होता था असल मजेदार. तो
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन.
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड सुबह सुबह अगर आपकी शुरुआत जो है वो म्यूजिक से हो तो इससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता. हालांकि उस जमाने में भी मम्मा बुरा माना करती थी कि स्कूल जाना है, ये क्या टीवी चला के नाच गाने देख रहे हो तुम लोग, ऊपर वाले का नाम लेकर दिन की शुरुआत किया करो. लेकिन नहीं जी, हमें तो एमटीवी देखना होता था. आंखें खुली हो या हो बंद, हमने देखना होता था लकी अली को. कभी कभी किस्मत अच्छी होती थी तो शकीरा भी दिख जाया करती थी. लिंकिन पार्क, ये हमने एमटीवी देख देख कर समझाए कि कौन है लिंकिन पार्क, अदरवाइज तो हमें पता ही नहीं होता यार. अलार्म तो भाई सिर्फ नाम का हुआ करता था, असली अलार्म तो हमारे लिए एमटीवी था, क्योंकि हमारी आंखें एमटीवी से खुलती थी. और यही नहीं, स्कूल से आने के बाद भी हाल यही था कि स्कूल से आते के साथ ही बैग एक तरफ और एमटीवी फिर से चालू. कपड़े बदलते वक्त भी ना नजरें हमारी टीवी पर ही रहती थी, जैसे कोई वीडियो मिस हो गया ना तो पूरी दोपहर ही हमारी अधूरी रह जाएगी. आज हालांकि सब कुछ ऑन डिमांड हमें मिल जाता है, एट द क्लिक ऑफ अ बटन हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कौन सा वीडियो देखना है, लेकिन उस वक्त हर वीडियो का इंतजार हुआ करता था. हर सुबह हर दोपहर एमटीवी में अलग ही जादू हुआ करता था. और एमटीवी के वो वीजेस, शहनाज ट्रेजरी वाला, मारिया गुरेटी, मलाइका अरोड़ा, साइरस, एंड दैट टू टाइप्स ऑफ साइरसेस. हां, सो मेनी यादें यार जो एमटीवी से जुड़ी हुई है. सीरियसली मतलब एमटीवी देखना वाज नॉट जस्ट कूल बट आल्सो मूड चेयर अप करने के लिए, समा बांधने के लिए एमटीवी काम आता था फुल. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: यार एक बात बताओ, ये फ्रिल्स में इतना थ्रिल क्यों हुआ करता था बैक इन द 90s?
2: ये है नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। यार आज के बच्चों का फैशन देखती हूँ ना, तो आई वंडर कि ये कितने सिंपल तरीके से तैयार होते हैं यार। आई मीन कितनी डिसेंट तरीके से ये बच्चे तैयार होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि कोई बड़ा ही तैयार होके आया हो। लेकिन हमारे दौर में, हमारे बचपन में, भाई वी नेवर यूज टू कॉम्प्रोमाइज विद अ ड्रेस जो कि बिना फ्रिल्स की होती थी। अब भले से ही हम बहुत ज्यादा गॉडी लगते हो, ऐसा लगता हो कि हमने जो पहना है वो बहुत ही ओवरडन है और इतने फ्रिल्स की जरूरत नहीं है, जो भी रीजन हुआ करता होगा फैशन का उस टाइम पर, लेकिन मुझे तो मेरे वार्डरोब में फ्रिल्स चाहिए होती थी। ये फ्रिल में जो थ्रिल था वो क्यों था, ये मुझे आज भी नहीं समझ में आया। मतलब मेरी चॉइस का क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल हुआ करता था। सॉक्स में फ्रिल, फ्रॉक्स में फ्रिल, हेयर बैंड में फ्रिल्स, और अगर सैंडल में फ्रिल्स मिल जाए ना तो लाइफ वॉज चिल। आई वॉज अ फैन ऑफ फ्रिल्स यार, और यही आज मैं हूँ जिसे ये सब कुछ ना बड़ा ओवर लगता है। आज वो दौर है when less is more, और वो दौर था जब मोर वॉज लेस। बड़ा मजा आता है ये सोच के कि दोनों ही दौर में बड़े अच्छे तरीके से जी रहे हैं हम। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: कोयला मूवी का एक गाना था बदन जुदा होते हैं। वेल, ये गाना शायद हमें आज याद भी है और नहीं भी है, हमने कभी सुना और उसको अनसुना भी कर दिया, लेकिन इस गाने में एक म्यूजिक का पीस है जो कि मूवी में भी काफी सारे सीन्स में फिर इस्तेमाल हुआ है। और ये जो म्यूजिक का पीस है ना, ये सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है, लेकिन यही म्यूजिक का पीस ओरिजिनल नहीं है बाबू मशाय।
2: मिर्ची थग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और राजेश रोशन की दी गई म्यूजिक का ये जो गाना था, विच गोज दिस वे।

is actually not an original piece of music. Vangelis karke there was this music composer jisne bahut hi khoobsurat music diya hai and inke music se Rajesh Roshan aksar kafi inspired rahe hain. सिर्फ वैंगलिस का यही म्यूजिक का पीस ही नहीं, उन्होंने काफी सारे और म्यूजिक के पीसेस भी उठाए हैं अपने गानों के लिए. एंड ये वाला जो म्यूजिकल पीस है दैट इज कॉल्ड कॉन्क्वेस्ट ऑफ पैराडाइज.

अगर आपके पास भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है कि 90s या अर्ली 2000 की कोई फिल्म या गाने कहीं से कट कॉपी पेस्ट है तो डीएम कर दीजिएगा मुझे ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: होती है, तो हमें ये पता होता है कि उस इंसान ने अपने हल्दी मेहंदी पे क्या पहना, अपनी शादी में क्या पहना, रिसेप्शन में क्या पहना, और क्या क्या फंक्शंस हुए. यू नो एवरी डिटेल वी गेट टू सी एंड नो ऑन इंस्टाग्राम, या फिर मीडिया तो है ही कवर करने के लिए. लेकिन बॉलीवुड की एक ऐसी शादी है जिसके बारे में आज तक किसी आउटसाइडर को कुछ नहीं पता, यहाँ तक कि ये भी नहीं पता कि रानी के लहंगे का कलर क्या था यार.
1: नब्बे की गप्पे.
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड यस, रानी मुखर्जी एंड आदित्य चोपड़ा की जो लाइफ है और उनकी जो शादी है, ये आज तक नहीं पता लगा कि चल क्या रहा था और क्या चल रहा है. ये दोनों ही इतने प्राइवेट लोग हैं ना. वेल, आई रियली लाइक दिस अबाउट देम एज वेल. लेकिन हाँ, एक डिटेल जरूर पता लगी है रिसेंटली. सब्यसाची ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात को जाहिर किया, जग जाहिर कर दिया इनफैक्ट, कि यू नो यूजुअली ही वर्क्स फॉर एक्ट्रेसेस, उनके लहंगे, उनका ब्राइडल कुटोर एंड एवरीथिंग. लेकिन बहुत टाइम पहले से ही सब कुछ पता होता है, तो उनके पास टाइम होता है टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग. लेकिन रानी मुखर्जी की शादी जो थी वो बड़ी चैलेंजिंग थी उनके लिए, बिकॉज देयर वाज दिस वन डे व्हेन रानी मुखर्जी जस्ट वॉक्ड इन टू हिज बुटीक एंड यू नो शी जस्ट सेड रैंडमली कि यार 5 दिन के अंदर तुम्हें मेरा लहंगा बनाना है, एंड ये लहंगा मेरी शादी का लहंगा है. एंड यू नो दैट टाइम वॉज अ टाइम फॉर सब्यसाची विच वॉज क्रेजी एंड चैलेंजिंग एज वेल. लेकिन उन्होंने ये भी कहा इसी बात के साथ कि सबसे ज्यादा मजा भी इसी काम में आया, क्योंकि इट वॉज सो अनएक्सपेक्टेड एंड ही वॉज डूइंग सम वर्क जो कभी कहीं नजर ही नहीं आएगा. उन्हें ये बात पता भी नहीं थी, क्योंकि आगे जाके आज तक भी किसी को नहीं पता कि यार रानी मुखर्जी असल लाइफ में दुल्हन बनकर कैसी लगी होंगी. आई एम श्योर जस्ट लाइक हाउ शी लुक लाइक अ ब्राइड इन हर मूवीज एक्टिंग करते हुए. लेकिन हाँ, वो जो चेहरे पर एक ब्लश होता है, एक चमक होती है, एक शर्माने वाली अदा होती है, वो थोड़ी एक्स्ट्रा निकल कर आई होगी और नेचुरली निकल के आई होगी. You tune in with me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi. It's hot.

मेरे दो दिलों की मंजिल तो है लव स्टेशन। सबसे पहले आई हूँ करने दिल का रिजर्वेशन, तू जो चाहे ले ले मेरे दिल का एग्जामिनेशन।

फिश सैंडविच हैमबर्गर या बटर रोल सबसे मैं हूँ टेस्टी सुन ले मैं हूँ बेबी डॉल गुस्सा तेरी गोली जैसा बोल तलवार से दिल का शिकार कर हनी जरा

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear Silvatta,
2: यादों को चिट्ठी।
1: लाल मेरे दिल का हाल था और लगता तुम पर कमाल था। मेरी नानी के घर में तुम लाल रंग के थे और मैंने तुम्हें उसी रंग से पहचाना है। हालांकि लेटर ऑन मुझे पता लगा कि तुम टैंड लुक यानी कि ब्लैक कलर में भी आते थे। एनीवेज इट्स नेवर अबाउट द कलर, लेकिन इट वाज डेफिनेटली अबाउट हमारे घर का खाना जो तुम पर मसाले पिसने के बाद स्वाद में निकल कर आता था विद फ्लाइंग कलर्स। तुम्हारी वो भारी भरकम पर्सनालिटी जो रसोई के एक कोने में टिका करती थी और हर सुबह कामवाली मासी तुम पर नाना अब्बा के लिए ड्राई फ्रूट्स पीसा करती थी। उस टाइम पर तो रसोई में तुमसे ज्यादा कोई बिजी नहीं हुआ करता था, क्योंकि एक बार ड्राई फ्रूट्स का काम हो जाता था उसके बाद फिर मसाले पीसे जाते थे और फिर फ्रेश चटनी। ओए होए, तुम्हारे ऊपर पिसी हुई धनिया, मिर्ची, लहसुन, इन सब की खुशबू ना आज भी मेरी नाक में बसी हुई है। वो टेस्ट जो तुम्हारे हाथों से निकले मसालों में होता था, आज की मिक्सी वाले मसालों में कहाँ होता है यार। हालांकि आज अगर ये बात कोई मर्द कह दे तो उसे एंटी फेमिनिस्ट कहा जाएगा, जबकि मेरे हिसाब से तो ये सिर्फ टेस्ट की बात है यार। जब मम्मा तुम्हारे ऊपर चटनी पीसा करती थी ना, तब हम बच्चे पास में बैठकर उंगलियां चाटते थे और इंतजार करते थे कि कब एक कटोरी चटनी मिले। तुम्हारे साथ वो टेस्ट और वो घटघट वाली आवाज भी चली गई यार, जो अब कभी लौट कर तो नहीं आएगी। तुम सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा नहीं थे, तुम रसोई घर की रूह थे और तुम्हारे टाइम पर किचन को हम रसोई घर ही बोला करते थे। शायद तुम्हारा पर्सनल टच एक कमरे को घर का एहसास दे देता था। तुम्हारे आसपास न जाने कितनी बातें, कितने गाने, कितनी कहानियां गूंजा करती थी। आज जब सब कुछ मशीनों ने टेक ओवर कर लिया है ना, तब तुम्हारी सादगी और अपनापन बहुत याद आता है। तुम्हारे पिसे हुए स्वाद को याद कर दी तुम्हारी फूडी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट सारा जमाना सारा का दीवाना मिड डे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आशा भोसले, आदित्य नारायण और ऋचा शर्मा की आवाज में ताल मूवी से ये गाना इस कैसेट के साइड बी का चौथा गाना।
0: मिर्ची 90s कैसेट।
1: ये आवाज इस गाने में आदित्य नारायण ने निकाली थी और वो जो बच्चे का जितना भी पार्ट है ना वो सब आदित्य नारायण ने गाया था। सोचो जरा, ये भी कभी इतने छोटे हुआ करते थे। लेकिन इस गाने की बड़ी सही बात ये है कि ये जो गाना है ना ये बिल्कुल सच बोल रहा है यार, कि यार कहीं आग लगे लग जाए, कहीं नाग डसे डस जाए, लेकिन ये जब दिल टूटता है ना और इसमें जो दर्द होता है ना वो नहीं सह सकता यार इंसान। बाकी सारी चीजें तो हम झेल लेते हैं वाकई में, ऑन अ डेली बेसिस कितने सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जब हार्ट ब्रेक होता है ना तो बाय गॉड दुनिया रुक जाती है यार, किसी के लिए कुछ महीनों के लिए, किसी के लिए कुछ दिनों के लिए, तो किसी के लिए कुछ सालों के लिए। और कुछ तो ऐसे भी हैं यार जो एक चक्के में पूरी जिंदगी के लिए अटक के रह जाते हैं। भले ही उनके लिए दुनिया आगे बढ़ गई है, लेकिन वो जो मोहब्बत उन्होंने कभी की थी ना सच्चे दिल से और जिसमें उनका दिल टूटा था, वो आज तक रिपेयर जोन में नहीं आ पाया है, बस जीना सीख लिया है। तभी तो कहे कि जाए जा ना जाए जिया। यार ये बात तो मैं भी कहती हूँ कि यार जान चली जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दिल गया ना भाई तो बहुत फर्क पड़ने लग जाता है। दुनिया कैसी हो जाती है यार, क्योंकि क्या है ना कि प्यार खूबसूरत भी बहुत होता है, लेकिन साथ ही साथ वो जो एक डर होता है, और यू नो कभी कभी ऐसा होता ही है हमारे साथ कि यार वो डर हमारा सच हो जाता है, तो वो दर्द भी होता है, यानी कि डर दर्द में तब्दील हो जाता है। ओए होए होए होए होए होए, ऑल द बेस्ट है जी अगर आपने नया नया प्यार किया है, एंड ऑल द बेस्ट टू दोज एज वेल जो ऑलरेडी प्यार से डील कर रहे हैं, जो उतार चढ़ाव से डील कर रहे हैं। क्योंकि क्या है ना कि प्यार से डील करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ब्रेकअप से डील करना थोड़ा मुश्किल है। ऑल द बेस्ट टू यू। और इसी के साथ जाते जाते यही गाना आपके लिए लगाते हुए जा रही हूँ और आपसे कहती हूँ हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी यहाँ के अलावा मैं आपको मिल ही जाऊंगी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। Stay tuned to Mirchi. It's hot.

Michi, it's hot. साथी रे थोड़ा ठहर जा।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

हाय हाय हाय हाय, क्या गाना है। और ये गाना ना मैंने आपकी तरफ से खुद को डेडिकेट कर दिया है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो पिछले 2 हफ्ते से मैं ये पुरानी जीन्स शो होस्ट नहीं कर रही थी और आप में से बहुत से लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे DM किया एंड आई वाज सो टच्ड, आई वाज ओवरवेल्म्ड कि आपने मेरा हाल चाल पूछा कि मैं शो पे क्यों नहीं आ रही हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर दो स्वीट मैसेजेस। एंड अगर आप मुझे गाने के फॉर्म में पूछें कि मुझे तुमसे हैं कितने गिले, तुम इतने दिन बाद मिले, बोलो इतने दिन क्या किया, तो मैं कहूँगी कि वेकेशन की, बहुत मज़ा किया। और अब गाने की बात छिड़ ही गई है तो गाना सुन लेते हैं, राम लखन फिल्म का पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि आर यू अ माउंटेन पर्सन और अ बीच पर्सन। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। देखो, कुछ लोगों को माउंटेन्स पसंद होते हैं, कुछ को बीचेस पसंद होते हैं, कुछ को दोनों पसंद होते हैं, लेकिन बात अगर घूमने की आती है तो दोनों जगह घूमने के पैसे भी सेव होने चाहिए पूरे साल में। तो हम जैसे मिडिल क्लास लोग जो एक ही वेकेशन के पैसे सेव कर पाते हैं, तो एक जगह जाने की बात हो तो फिर मैं पहाड़ों पे जाती हूँ। और क्योंकि मैं मई के महीने में घूमती हूँ, मई मेरा बर्थडे मंथ होता है, तो फिर पहाड़ों में जाना ही पसंद करती हूँ। एक्चुअली बीचेस पे जाना मैं इसीलिए भी नहीं प्रेफर करती थी कुछ टाइम तक, क्योंकि मुझे पानी से बहुत डर लगता था यार, बचपन से ही। मतलब मुझे स्विमिंग भी नहीं आती थी, बड़ी हिम्मत करके मैंने 2 साल पहले स्विमिंग ऐसे सीख ली, मतलब काम चला उसी। तो एक दो बीच वेकेशन मैंने की है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर प्रेफरेंस पूछी जाए और पैसे वाला मामला भी कंसिडर किया जाए तो यस, माउंटेन्स फॉर श्योर। और इस साल मैं कौन से पहाड़ों में घूम कर आई हूँ मैं आपसे शेयर करूंगी। फिलहाल तो ये गाना शेयर कर रही हूँ जिसमें कितनी सुंदर पहाड़ों वाली फील है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Mirchi. It's hot.
1: Purani jeans. With Charu. Only on Mirchi.

0: मैं अपने निकम्मे दोस्तों पर डिपेंडेंट थी, अब मैं काफी इंडिपेंडेंट हूँ।
1: मिर्ची, सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और मैं ट्रैवल प्लान्स की बात कर रही हूँ। एक टाइम था जब मुझे ऐसे लगता था कि ट्रैवल तो भाई फैमिली के साथ होता है, फ्रेंड्स के साथ होता है, अकेले सोलो कैसे ट्रैवल करते हैं लोग, और आज मैं वही लोग बन गई हूँ। कुछ लोग सोलो ट्रैवल बाय चॉइस करते हैं और कुछ बाय सर्कमस्टेंसेस करते हैं। तो मैंने बाय सर्कमस्टेंसेस सोलो ट्रैवल करना शुरू किया और अब ये मेरी चॉइस बन गया है। मतलब कुछ 5-6 साल हो गए मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ। और एक्चुअली पता है, जब आप सोलो ट्रैवल करते हो वो सोलो ट्रैवल रहता नहीं है, क्योंकि आप इतने नए इंटरेस्टिंग लोगों से मिलते हो, वो बहुत ही ऑसम हो जाता है। और हर साल अराउंड माय बर्थडे मई के महीने में मैं घूमने जाती हूँ पहाड़ों में। इस बार मैं कहाँ गई, क्या किया, बताऊंगी। फिलहाल ये गाना, जो मुझे ऐसे लगता है सोलो फीमेल ट्रैवलर्स का सॉर्ट ऑफ एंथम, इसको डिक्लेयर कर देना चाहिए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

तो थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी कि कैसे बाय सर्कमस्टांसेस मैं एक सोलो ट्रैवलर बन गई और अब मैं बाय चॉइस सोलो ट्रैवलर हूँ। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, बल्कि अब मैं वो दोस्त बन गई हूँ कि कोई दोस्तों का ग्रुप प्लान भी बन रहा होता ना ट्रैवल का, तो मैं वो प्लान खराब करती हूँ बोल के कि मैं नहीं जा रही क्योंकि मुझे अकेले ट्रैवल करना होता है। और एक्चुअली अकेले कहाँ होता है, यू नो, जब आप सोलो ट्रैवल करते हो आप इतने लोगों से मिलते हो कि कई बार उनके साथ ग्रुप ट्रैवल ही हो जाता है, पर वो दोस्तों के साथ वाले ग्रुप ट्रैवल जैसा नहीं होता है क्योंकि वो बिल्कुल ही नए लोग होते हैं जिनसे आप मिलते हो। उनकी ज़िंदगी के बारे में आपको पता चलता है, लाइफ को लेके नए पर्सपेक्टिव्स आपको मिलते हैं। मैं तो खास करके इसीलिए कोशिश करती हूँ इन दिस मंथ ऑफ मे, क्योंकि मेरा बर्थडे मंथ होता है, मुझे लगता है मुझे नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नए रियलाइजेशंस होंगे, विजडम मिलेगी जो साल भर में ख़त्म हो जाती है, फिर मैं अगले साल रिचार्ज करने या उसे रिन्यू करने चले जाती हूँ। और वैसे मैं ऐसे काफ़ी जगहें निपटा चुकी हूँ, उत्तराखंड में, हिमाचल में, नॉर्थ ईस्ट में, कश्मीर वगैरह उधर सब। इस साल मैं हिमाचल में गई थी टू अ प्लेस कॉल्ड धर्मकोट, करती हूँ उसके बारे में बात थोड़ी देर के बाद। राइट, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।

कई बार हम लाइफ में बहुत स्टक हो जाते हैं, नहीं? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ऐसा लगता है फंस गए, वही सेम सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, वही विशियस साइकिल चल रहा होता है लाइफ का। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी चल रहा था कुछ टाइम से। तो मेरी एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि हिमाचल के कांगड़ा जिले में एक धर्मकोट नाम की जगह है, वहाँ पे काफी सारे योगा कोर्सेज हैं। तो उसने मुझे एक पर्टिकुलर योगा कोर्स सजेस्ट किया कि तू ये जाके कर, यू माइट फील बेटर। तो मैंने ये कोर्स किया 9 दिन का। मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था बिकॉज द काइंड ऑफ डिसिप्लिन दैट वाज एक्सपेक्टेड वो मेरे लिए मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, बट आई लर्न समथिंग न्यू। ऑल्सो ये जो जगह है ना धर्मकोट, इसकी क्या अमेजिंग वाइब्स हैं, करती हूँ इसके बारे में बात थोड़ी देर के बाद, राइट हियर पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

आओ वापस चले हिमाचल के धर्मकोट। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई हर साल अपने बर्थडे मंथ में, मई मंथ में, मैं कहीं ना कहीं ट्रैवल करती हूँ और इस साल मैं गई थी हिमाचल के कांगड़ा जिले के धर्मकोट। एक्चुअली गई तो मैं एक 9 दिन का योगा कोर्स करने थी, जो मेरे लिए 18 दिन का साबित हुआ, क्योंकि वो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, बट आई लर्न समथिंग न्यू। एंड अदरवाइज इस जगह की बात करें अगर धर्मकोट की, छोटा सा प्यारा सा हिल स्टेशन जहाँ की ना बहुत हीलिंग वाइब्स हैं, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाली जगह हम बोल सकते हैं। एक तो ये योगा सेंटर्स है वहाँ पे, बहुत सारे मेडिटेशन सेंटर्स हैं, आयुर्वेद ट्रीटमेंट वहाँ पे होता है, बहुत स्पिरिचुअल चीजें होती हैं ऐसी, होलिस्टिक हीलिंग वाली, सूफी इवनिंग्स होती हैं, कवालियाँ होती हैं, कीर्तन होते हैं। तो मेरी जो लो वाली फ्रीक्वेंसीज थी वो मीडियम तक तो पहुंच गई। तो आप भी कभी लाइफ में ऐसे स्टक हो या आपको ऐसी किसी जगह जाना हो तो दिस इज द प्लेस। ऑल्सो मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों से मिली, खास करके फॉरेनर्स से, जिनके बारे में हम करेंगे बात थोड़ी देर के बाद, राइट हियर पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची,
2: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
3: मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

तो इस साल मैं अपने ईयरली बर्थडे सोलो ट्रिप पर गई थी हिमाचल के धर्मकोट। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और ट्रिप पे मैंने सिर्फ मजा मस्ती नहीं, काफी मेहनत भी की। मैंने 9 दिन का एक योगा कोर्स किया जहाँ पर मैं बहुत सारे फॉरेनर्स से मिली। देखो, लोग तो बहुत मिलते हैं जब आप ट्रैवल करते हो, लेकिन कुछ लोग आपको खास तौर पे याद रह जाते हैं। तो ऐसा एक बंदा था मतेओ, इटालियन गाय, ऑलवेज स्माइलिंग। मतलब एक होता ना, किसी की स्माइल ऐसे दिल से आती है, जेन्युइन होती है, बिल्कुल कभी कोई प्रिटेंड नहीं करते वो लोग, वो वैसा था। और उसको देख के आपके चेहरे पे स्माइल आ ही जाती थी, क्योंकि वो ही हमेशा स्माइल कर रहा होता था। उसके साथ एक स्पैनिश बंदा भी रहता था, वो इतना स्माइल नहीं करता था, लेकिन दोनों बहुत गुड लुकिंग थे। तो मैंने उनको सुंदर लड़के ऐसे बोलना सिखा दिया था कि तुम सुंदर लड़के हो, पंजाबी में भी सिखा दिया था, सोने मुंडे। और बदले में जब वो मुस्कुरा के मुझे चाओ बेलिस्तिमा बोलता था ना, यानी कि हाय ब्यूटीफुल बोलता था ना, तो आय हाय हाय हाय ओय होय होय होय हो जाता था। इसी बात पे मतेओ के नाम, वो इटालियन बंदे के नाम, ये गाना पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: वैसे शायद तू क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

One of the most beautiful things about traveling is meeting new people. मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और इस साल अपने ईयरली बर्थडे सोलो ट्रिप पर मैं गई हिमाचल के धर्मकोट, जहाँ पर मैंने काफी मेहनत भी की क्योंकि मैंने एक योगा कोर्स किया. एंड इस कोर्स में आई मेट दिस गर्ल कॉल्ड एलिसा, जिसकी लाफ्टर इतनी इन्फेक्शियस, कंटेजियस, क्या बोलेंगे, ऐसी थी ना, वो ऐसे ऐसे करके हंसती थी और आप उसको हंसता सुनो आपकी अपने आप हंसी निकल जाती थी. इतनी प्यारी बंदी वो बिलोंग करती है सिएटल से, जिस जगह पे मैं कभी गई नहीं, लेकिन आई हैव दिस स्पेशल अटैचमेंट टू दिस सिटी बिकॉज 90s से स्लीपलेस इन सिएटल मेरी मोस्ट फेवरेट मूवीज में से एक है. आपने अगर ये मूवी नहीं देखी है प्लीज देखो यार, इतनी प्यारी फिल्म है ना ये. पूरी फिल्म में हीरो हीरोइन जो है वो मिलके भी नहीं मिलते हैं, लेकिन इवेंचुअली जब मिलते हैं तो एक दूसरे के हो जाते हैं. आपने अगर मूवी देखी है तो आपको पता है मैं क्या कह रही हूँ, नहीं देखी है तो देखो स्लीपलेस इन सिएटल. फिलहाल के लिए ये गाना पुरानी जीन्स पर. मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची.

0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।
1: Radio Mirchi, it's hot.
2: Mirchi, it's hot.

मैं और मेरी ट्रैवल स्टोरीज। हेलो, मिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तो इस साल अपने बर्थडे वेकेशन पर मैं गई हिमाचल के धर्मकोट और वहाँ की स्टोरीज आपसे आज शेयर कर रही हूँ। इस ट्रिप पे मैंने एक योगा कोर्स भी किया एंड वहाँ पे मैं बहुत अमेजिंग लोगों से मिली। एंड वन सच पर्सन वॉज मार्टिन, अमेरिकन गाय, मिड 60s में डॉक्टर, और योगा कोर्स तो वो पूरे एंथुजियाज्म के साथ कर ही रहा था। अदरवाइज भी वो इतना एनर्जेटिक था भाई। हमारा ना योगा कोर्स बहुत टायरिंग था जो क्लासेस होती थी, लेकिन ये बंदा थकता नहीं था। वो क्लासेस के बाद भी हमारी तो टाइम टाइम फिस हो जाती थी। ये जाके एक्सप्लोर करता रहता था इतने कैफेज, कोई और वर्कशॉप हो रही है, कोई और क्लास हो रही है, वहां पे भी जाता था। द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग ही वॉज डूइंग, वो सीख रहा था इंडियन क्लासिकल डांस, ओडिसी डांस, क्योंकि 2 महीने बाद उसकी डॉटर की शादी है और उस शादी में वो ये इंडियन क्लासिकल डांस परफॉर्म करेगा। कि कितनी खूबसूरत बात होती है ना, आप किसी के कल्चर से कुछ सीख रहे हो, वो आपके कल्चर से कुछ सीख रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स एवर। तो मार्टिन ने तो मुझे बहुत इंस्पायर किया। और ये शादी के संगीत टाइप का गाना हम सबको खुश करने वाला है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3
0: मिर्ची, इट्स हॉट। पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर

जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ ना, हर बार मैं सोचती हूँ इस बारे में बात ना करूँ, लेकिन इन चीजों के बारे में अगर बात न की जाए तो फिर वो सही बात नहीं है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जो कचरा फैलाते हैं, पॉल्यूशन फैलाते हैं, सिविक सेंस जिनमें नहीं है, जैसे चिप्स चॉकलेट खाया, रैपर पैकेट वहीं फेंक दिया, पानी पिया, कोल्ड ड्रिंक पिया, बॉटल वहीं छोड़ दिया। कितना टाइम और एफर्ट लगता है कि आप उन चीजों को अपने बैग में रख लें, अपनी गाड़ी में रख लें, अपने पास रख लें, और फिर जहां भी आपको डस्टबिन दिखे वहां फेंक दें। कितना ही टाइम एफर्ट लग जाता है। उसके बाद साउंड पोल्यूशन, बड़े बड़े स्पीकर्स लेके लोग टूरिस्ट प्लेसेस पे, पब्लिक प्लेसेस पे घूमते हैं, ऊंची ऊंची आवाज करके गाने सुनते हैं, खा पी के हुल्लड़ करना, आधी आधी रात को चिल्ला रहे हैं। भाई वो जगहें जो हैं, टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं, पहाड़ों की खास करके मैं बात कर रही हूँ, वो बहते पानी की, साए साए करके जो हवाएं चलती हैं उसकी, पक्षियों के चहचहाने की, वो आवाजें सुनने की जगह है। शोर शराबा हुल्लड़ नहीं। आई होप लोग ये बात समझें, इन पे अमल करें। फिलहाल आप एक काम करें, ये गाना सुने पुरानी जींस पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

Mirchi. It's hot. पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

जिंदगी के सफर में कई बार सफरिंग इतनी बढ़ जाती है कि ट्रैवल वाला सफर करना पड़ता है। फिर से सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ट्रैवलिंग इज थेरेपी, इट्स मेडिसिन। और मैंने आपसे शेयर किया था ना कि मैं तो एक टाइम पे ऐसी होती थी, मुझे लगता था भाई ट्रैवल तो फैमिली के साथ होता है, फ्रेंड्स के साथ होता है, ऐसे सोलो कैसे ट्रैवल करते हैं। लेकिन फिर जब सर्कमस्टांसेस की वजह से अकेले ट्रैवल करना शुरू किया, उसके बाद से तो अकेले ही ट्रैवल करती हूँ। कई सालों से काफी कुछ एक्सप्लोर कर लिया है। हाँ, साल भर पैसा सेव करना पड़ता है, काफी कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है, लेकिन दैट ट्रैवल इज वर्थ इट। और अकेले ट्रैवल करना तो आपको इतना वाइजर बना देता है, रिस्पॉन्सिबल बनाता है, ब्रेव बनाता है। कितनी सारी चीजें आप अकेले हैंडल करते हो, फेस करते हो, और सबसे खूबसूरत बात, इतने सारे नए लोगों से मिलते हो, उनकी लाइफ के बारे में आपको पता चलता है, उनके कल्चर के बारे में। कोई अलग स्टेट के किसी बंदे से आप मिल रहे हो, किसी दूसरी कंट्री के बंदे से आप मिल रहे हो, या फॉर दैट मैटर कोई दूसरी कंट्री आप घूमने गए हो, और कई बार उनसे मिलते मिलते खुद से भी मिल जाते हो। सो कीप ट्रैवलिंग, इसे आप ट्रैवल करने का साइन समझ लो। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची मिर्ची मिर्ची इट्स हॉट पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

पहाड़ों में जब हम घूमने जाते हैं तो हमें मजा आता है क्योंकि नज़ारे अच्छे होते हैं, मौसम अच्छा होता है और एक और चीज होती है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। पहाड़ों में जब हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी पुराने टाइम में चले गए हैं, जैसे वक्त वहां पे ठहरा हुआ है। लाइफ की पेस स्लो हो जाती है, लोग जल्दी उठते हैं सुबह, आराम से अपने काम निपटाते हैं और दिन जल्दी निपटाते हैं, टाइम से सो जाते हैं। वहां की पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कैब्स वगैरह में भी अक्सर आपको 90s के गाने या पुराने गाने सुनने को ज्यादा मिलते हैं। नदी के बहने की आवाज, पक्षियों का चहचहाना, हवा चलने की आवाज, ये सारी चीजें आपको महसूस होती हैं क्योंकि स्लो डाउन हो जाता है, विच इज सो हीलिंग। तो लाइफ में जितनी भी हीलिंग चीजें हैं, फिर चाहे वो ट्रैवल करना हो पहाड़ों में या फिर अपने लव्ड वंस की हीलिंग हग्स हो, वो सब आपको मिलती रहे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

Mirchi. It's hot. Mirchi, it's hot.

0: रिश्ते में तो ये हमारी माँ लगती है। नाम है इनका एंग्री यंग वुमेन।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अब बाबू मोशाय, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से हमें एंग्री यंग मैन तो मिला है, लेकिन हम आज बात करने वाले हैं एंग्री यंग वुमेन की, क्योंकि भाई औरतों को भी गुस्सा आता है और उनके गुस्से और उनके इस आइडेंटिटी को लेकर भी बहुत सारी फिल्में बनी हैं हमारी इंडस्ट्री में। एक्टर्स लाइक स्मिता पाटिल, शबाना आजमी और दीप्ति नवल ने ऑलरेडी इस फोर्टे को एक्सप्लोर किया है बैक इन द 70s। बट आज पांच का पंच के लिस्ट के थ्रू मैं आज के डेट के कुछ एंग्री यंग वुमेन की बात करने वाली हूँ। लिस्ट में सबसे पहले लेट्स डिस्कस शिपाली शाह मैम। भाई इनका कैरेक्टर दिल धड़कने दो में हो, जो अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबा के रिप्रेस करके रखती है, या फिर उनका कैरेक्टर डार्लिंग में हो, जो जनरेशनल रेज को अपने अंदर दबा के रखती है बट अल्टीमेटली उसको इस लिमिट्स तक पहुंचाया जाता है कि उसका गुस्सा निकल ही जाता है। सो ऑल इन ऑल शिपाली शाह एज एन एंग्री यंग वुमन एम्बॉडीज फ्यूरी, जो अक्सर छुपा होता है जब तक उसको निकलने पे मजबूर ना किया जाए। तो बाबू मोशाय, मेरी इस लिस्ट में अभी और चार ऐसे ही एंग्री यंग वुमेन ऑफ बॉलीवुड की बातें बाकी हैं, बट ऑल ऑफ दैट इन अ व्हाइल। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi. It's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: करते दिल की फीलिंग्स।
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची इट्स हॉट।
2: Authentic, original, and better than our right.